के निर्जुन रूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जाव गोर घर देख कुल गाव तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देख कुल गाव तेरा नाम है जी दुख दुख सत पुन सत लगे तक बद

सब्सटेंस टू बी सन। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची वाणी, वेर एवर वाणी कम्स सिंगिंग कम्स विद इट। गुरबाणी गावो भाई, आयो पढ़न सुनन को बाणी। सो एंड वेर एवर गुरु टॉक्स अबाउट चैंटिंग, ही टॉक्स अबाउट रिमेम्बरिंग। सो वट ही सेज इज इज एनी ऑफ द नेम ऑफ ऑल माइटी वाहेगुरु। ऑल माइटी गॉड हैज सेवरल नेम्स एंड ऑल दीज नेम्स दे टॉक अबाउट सर्टेन वर्च्यूज ऑफ द ऑल माइटी गॉड। So all those names, and whenever any of those names come in Guru Granth Sahib, it is referred as, or it is told that you chant these names, or you remember the name. But wherever Bani comes, it always comes with an instruction to sing. So it is a substance to be sung. That is why Kirtan is so important in Sikh religion. If we may say that Kirtan is our Guru, then we are not wrong. Kirtan is Guru because Kirtan is Vani when it is sung.

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सात मिनटां विच पढ़ के समय सिर समाप्ति ते पातशाह ने मेहर कीती है जिन्हां जिन्हां ने हाजरियां भरियां हन तुहाडियां हाजरियां पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

मत भूले। कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे। कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नू मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया है, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा है एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा है हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है, ऐसा एक पै गया कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पलां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां विच।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

Urbina para pave. Urbina para pave. Dani da da. Urbina para pave. Dani da da da. Urbina para pave. Hingla Himalaya. Gor gar de ji gun gaave tero naam hai. जोग जोग साधे पौन साधना कते एक बात अरब के आर भी अराधे तेरो नाम है। फारसी फरंगी माने कलदारी कुरा सीधाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए मरहट्टा मंगेल तेरी मन सुन तपस्या कर मरहट्टा मंगेल तेरी मन सुन तपस्या कर।

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारा वारिया। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं। गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे।

दो तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धन तम फल फूल को फल ते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया तेरा अंत

तेरा अंत न पार बारिया, तेरा अंत न पार बारिया, तेरा अंत न पार बारिया, तेरा अंत न पार।

लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड ही हु इज डेस्टिन्ड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस माइंड यू माई माइंड द वन एंड वन अलोन विदाउट हिम ऑल एल्स इज वेस्ट इल्यूजन माया एंड फॉल्स लव वन एंजॉयज मिरियड्स ऑफ चॉइस वन इज अ किंग इफ द लॉर्ड्स ग्रेस बी अपॉन हिम.

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ, ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे, किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है, किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा, किस टेक्निक दे द्वारा, किस विधि दे द्वारा, किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

कहते हैं मैं परम गति पाले ही। सब तो ऊंची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भगत रविदास जी दस दहन के मेनू ते साथ संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रास्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्हां ने पक्के होए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुआं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुन्ने हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसे ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसे वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं। मेरे नाल किसे ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेरे तो भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं ये सारे द सारे फौरन पाड़ सटे, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसमें सुनो फिर उसका अर्थ करांगे।

अरे दात मंगो अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार च, गुरु नानक दे प्यार च। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दिया कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उडिया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तने जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहने लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गईयां न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परोके ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वाली। पर मरदाना काला है, 12 साल तू बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहने लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की।